ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसिए सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसिए ध्यान लइए पौ मुकह गुर अमरदास परसिए अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जौ तौ रहै जा सुमंत्र मान वैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

जिदे नाल लुहार गर्म लोहे नूं पकड़दा है। चिंता दी सन्नी है, पापां दे कोले ने, मन लोया वकारां दी आगे। कह लगी भया मनूर, गुरु नानक साहब कहिंदे ने सड़ के बिल्कुल मनूर हो गया है। मनूर दर ते ओह निकम्मा लोया कि जिहड़ा किसे कम नहीं आउणा। भया मनूर ते बाबे अमरदास ने जदों सुनिया शब्द भया मनूर ते इहदियां भुब्बां निकल गईआं। कह लगा बचिए जेड़े बचन तेरे गुरु ने कह, सच पुछ अमरदास दा अंदर भी सड़ के मनूर हो चुका है। मैं ता सड़े हुए लोहे दी तरह वां, मैनू किते भी थां नहीं। ते बीबी अमरो दे अगले शब्द सन, पिता जी गुरु नानक दी अगली गल तां सुन लवो, भया मनूर जेड़ा निकम्मा लोहा सड़ चुका है, कंचन फिर होवे ओ सोना बन सकदा है, पर शर्त एक के जे गुरु मिले तनेहा, जे पूरा गुरु मिल पवे ओ सड़े हुए लोहे नू ही सोना बना देंदा है। पर किवें बनांदा है? एक नाम अमृत ओ देवै तो नानक त्रिष्ट सदेहा, जे नाम अमृत देवै ते सड़े हुए मना नू भी कीमती सोने वर्गे बना देंदा है। बाबा अमरदास कह लगा बचिए, गल तो तेरी ठीक है कि सड़े हुए लोहे भी सोना बन सकते ने, पर गल तां उत्थे फिर अटक गई ना, पूरा गुरु मिले कित्थों, किवें मैनू कोई सोने सोना बना देवे। साध संगत देखो गुरु के शब्द विच इन्नी ताकत जे, बाणी विच इक प्रमाण हुंदा है गुरु अर्जन साहब जी दा, किन्ने जेड़ा बंदा दुनिया तो तंग हो जाए ना, जिन्हों संसार दे लोक बिल्कुल पसंद ना करन, कई वारी बंदा परिवार तो भी दुखी हुंदा है ते फिर एक आस नाल जींदा, चलो परिवार नहीं निरंकार ते है ना, रब ते है ना। ते गुरु पंचम पिता कहिंदे ने जिहड़ा संसार तो दुखी होया है ते निरंकार वल तुर पिया, ते जे निरंकार भी कह के तेरे वर्गे निकम्मे नूं मेरे घर भी थां नहीं, हो जाए किथे, जिन्हों संसार नहीं रखदा वह निरंकार वल जांदा, ते जिन्हों निरंकार कह दे तेनू मेरे घर भी थां नहीं वह किथे जाए। ते सतगुरु बाणी विच कह लगे सजना ध्यान दई, जे संसार नहीं रखदा निरंकार नहीं रखदा ते पूरे गुरु के शब्द नाल जुड़ जा, गुरु के शब्द विच इन्नी ताकती, संसार ते निरंकार दे धक्या होया नूं भी गुरु पवित्र करके रब दी दरगाह विच प्रवान कर दिंदा। बाणी विच बचन आया हजूर कहिंदे ने आपे कुदरत साज कह, आपे करे विचार इक खोटे इक खरे, आपे परखण हार खरे खजाने पाइए, खोटे सतियां बार बार खोटे सच्ची दरगाह सुटिए, खोटियां नूं सच्ची दरगाह विचों भी बाहर सर दिता, किस आगै करे पुकार किदे कुल जाके खोटा रोवे। ते साहब कहिंदे ने सतगुर पिछे भज पवे, यह आ करनी सार क्योंकि सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवार बहार। गुरु कोल ए ताकत है, खोटे नूं भी खरा बना दिंदा। कहन लगे बचिए मन मेरा मनूर ही, गुरु नानक दे चरणा विच मैनू लै जा, जिदी बाणी सुन के टिका मिलिया ते जिदा मैं ओदा हो जावांगा उदन पता नहीं किन्ना कु आनंद मिलेगा। ते बीबी अमरो ने एक शब्द कहा, कह लगी पिता जी गुरु नानक साहब ता हो गए ने अंतर ध्यान, उन्हां दी जोत हुण मेरे पिता गुरु अंगद साहब दे अंदर विराजमान ने, मेरे पिता जी ने खडूर। ते कहन लगे धीए जिथे गुरु नानक दी जोत है तू मैनू उथे लै जा, मैं हो सकदा तेरे पिता दे चरण परसा ते मेरे अंदर नू टिकाओ मिल जाए। उस वक्त बीबी अमरो ने कहा पिता जी गुरु पिता दा हुक्म है, साडी आग्या तो बिना घर नहीं आउणा, जे मैं चली गई ते गुरु पिता की कहणगे। ते बाबे अमरदास ने कहा कहण लगे धीए जिस गुरु की बाणी दे विच इन्ना बैराग इन्नी कृपा है, जदों मेरे वर्गे सड़े हुए मनूर नू गुरु पारस दे कोल लैके जाएगी ना ते मैं तरला लैके कह देंगे दाता ए अमरो तेरे करके नहीं, असल विच मेरे वर्गे सड़े हुए मनूर वास्ते आई, तू चल तो सही। अज एक बीबी जेड़ी बाणी विच रंगी है, चेते रखियो जे किते बीबियां बाणी नाल जुड़ जान ते पूरे दा पूरा घर तब्दील हो सकदा है। ध्यान दिया जे गुरमत विच बड़ी वड्डी थां है, बेबे नानकी बाणी नाल जुड़ी है, ते गुरु नानक कहिंदा रबाब मैं बेबे दे रुपइयां दी लैणी है। कमाल दी गल बीबी अमरो बाणी नाल जुड़ी है।

0: सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता ले रहे सी। आओ जितने को सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहमिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइय, पाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चुआइय। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब है शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उच्चारण किया। पर चेते रखना ए शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। ए शब्द आज भी गुरु के सिखां नूं इक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न दी प्रेरणा दे रहा है। शब्द असां सुणिया, बाबा नानक जी नूं जोगी मिलिया, इन्ने गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्हां ने प्याला भर के नशे दा पेश कीता है, शराब दा पेश कीता है। ते बाबा जी पुछदे ने इह की, कहण लगे एक वारी पी लईए ते परत के दिन चढ़े तक इहदा नशा उतरदा नहीं, ते इन्नी टेक के समाधि लाई दी है कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहण लगे भलिओ इह त्यार किवें कीता जे, ध्यान देना। कह लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किकर दे छक पाए ने, अमवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया, ते इहदे चौगिरदे आपां भांडे उपर होर बथल फिट कीता, उहदे विच नाली लाई है, भांडे उपर जेड़ा बथल फिट किया होर भांडा फिट किया, तो उहदे चार चफेरे असी मिट्टी का पोचा फेरिया, तो थल्लो अग बाली, तो जेड़ा इहदा अरक निकलिया इहनू असी रस कहिंदे आ। एक वारी पी लईए तो रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वल। बाबा जी कहन लगे शराब का नशा नहीं, वह रस की होए जेड़ा शाम नूं पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नूं पी चुका हां, ते इहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो उहदा नशा, उहदा सरूर, उहदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पुछया इह रस किवें तैयार हुंदा, ते बाबा जी कहन लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुर बनाया ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाई है ते उच्चे आचरण नू किकर दे सक बना दिता है पाठी पवन आ शरीर नू पठी बना दिता है इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया वा पाठी पवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विचो शराब नहीं एक रस अमेओ चुआईया एदे विचो अमृत दीआं बूंदा डिगदीआं एक रस अमेओ चुआईया कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया नाम रस पीवे सहज रंग रच रहा एमस बनी प्रेम निव लागी शब्द अनाहत गया एमस का अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जिहा सुरूर ओ विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओ शब्द सुनाई दे रहे ओ शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आपां कह दईए भी ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखियो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मातर नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी कोई सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने हां बाबा अमरदास जी एक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवा विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए की पछाण नहीं ओहो जिहे बंदे नूं तां रब दी दरगाह विचों भी धक्के पैंदे हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भगत रविदास जी का एक शब्द हुंदा नागर जना मेरी जात बख्यात चमारन उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नूं मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नूं पर भगत रविदास कहण लगे जेकर गंगा दीआं लहरां दे पाणी दी भी शराब कोई कढ लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा नहीं उहनां दा बचन है सुरसरी सललकृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दीआं लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ है लहरां सुरसरी सललकृत बारनी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पावन सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओह रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नूं ठगदा सी अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा व्यापारी बन गया गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान पै करदे ओ लोग तन नूं तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी धामदा पिया तन धुपदा पिया पर मन धामदा है मन धुपदा नहीं मैं बेनती की धामदा दर ते दौड़दा पिया पिंडे ते पानी पै रहा पर मन ते उस पानी दा असर नहीं ते कुछ कूने पानी दियां बुक्कां भरिया ने ते सूरज वल पानी पै सकदे ने ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नूं आपां वी अपने घर दा कोई सोचिए बाबा नानक जी पानी विच प्रवेश कीता ते लहिंदे नूं पानी झटना शुरू कर दिता पानी सिंजन लगे ते जदों बाबा नानक जी इकले लहिंदे नूं पानी सिंजदे पए ने हुण इन्नी भीड़ सी कहण लगे देखो आ बंदा कौन है ए हिंदू है ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਦਈਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਝੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਏ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕਦੀ ਪਈ ਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵੱਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਬੀਜ ਪਿਆ, ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਗੰਗਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਰੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਪਾਣੀ ਅੱਪੜ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਣ ਆਇਆ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸਿੰਜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਆਂ ਤੇਰੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਆਂ ਦੂਰ, ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕੁਆਂ ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਏ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 37 ਤੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 12 ਤੇ 13 ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਏ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਦਣ ਵਾਪਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਣੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਦਣ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਆਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਪਾਇਆ ਉਦਣ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਲੂਸ, असी भावे नगर कीर्तन कहने जलूस अखर माड़ा नहीं, बादशाह का पूरा शानो शौकत नाल बाहर निकलना इनू जलो तो जलूस बनिया। पर अज असी अखर वर दिता जिस बंदे की बदनामी होवे कहने कर दिता इहदा जलूस। एक अखर है बकना, आम तौर ते असी बकना अखर बकवास नू कहने, पर गुरु ग्रंथ साहब कहने बकना अखर भी माड़ा नहीं। कोई जन हर्षो देगा जोर चरण गहू, अगला अखर है बको शुभ रसना। कहने मैं अपनी जुबान तो बोला की बोला, जिन्हें मेनू रब ने जोड़िया मैं ओदे चरण घुट के पकड़ा। चरण गहू बकू शुभ रसना, दीजे प्राण अकोर अकोर दर ते भेटा, मैं अपने प्राण भी ओदे चरणा विच भेट कर दे। खैर जेड़ी मैं बेनती कर रहा, भाई गुरदास कहिंदे ने जिदन जमया से उदन माया ने प्रभाव पाया, विचों गर्दा निकल आया खत्म विसार दुनी चित लाया। जिदन जन्म होया भलिया कोई करोड़ा विचों विरले जेदी लिव जुड़दी आ, नहीं तां लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ते भाई गुरदास जी ने बड़े कमाल दे बचन कहे, कहिंदे ने जिदन जमया से उदन साई विसरिया, पर जिदन विआह होया उदन मां प्यो नूं विसार दित्ती। पर सारिआं ते गल नहीं टुकदी, जेड़े केवल मां बाप दी सारा जीवन तां बेइज्जती करदे रहे ते मरण तो बाद पानी लै लै के ते रोटियां लै लै भाइयां ते पंडतां दे पिछे तुरदे रहे, उहनां नूं भाई गुरदास कहिंदे पए। कहिंदे ने कामण कामणे आरिए कीतो कामण कंत प्यारे, नी तूणे हारिए इस्त्रिए तू कामण ने इस्त्री ने पति ते टूणा क्यों जा कर दिता। जमे साई विसरिया, जिदन जन्म होया सी उदन रब नूं भुला दिता, विवाया मां प्यो सारे जिदन शादी होई।
1: सतना है जिनके जहाज चलना है, तो सतगुरु गुरु का गोचर अमृत लोग सारे निर्माण मुकम्मल है। आप जी ने कहा कि हम गुरु कर रहे हैं वो सभी बहने हैं, इसलिए सारी संतन बेनती है अपना मान बढ़ा के सभी तरह मानस सदगुरु पर भी प्रकाश कर दिए सुखी प्राप्त करो, अपने जीवन सफल बनाए। बहुत सारे प्रोग्राम बाल कार्य को श्री शंकर सहवान में लड़ी चल रही है, जिस करके संख्या हम काफी जुड़ रहे हैं, संख्या की मेरी चलती है। सारी संख्या बड़े ख्याल है गुरु का रूपये हम सुख सेवा की दिशा पा रहे हैं, इसलिए सारी संख्या का तो संवाद है रहते दो बनाए कभी कहा अरे अपने जीवन में दूर करना जोड़ो और सुखा करना जरूरी है। दो ही घंटे वास्ते अवसर के आम जी कथा के नाम जोड़ेंगे, साढ़े अठ बजे तक आप जी कथा या लोग की कथा होकर वाजी की।

तैसा हरक तैसा उसोग, सदा अनंत है नाहे वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। तब गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म न नासा सिंह शरण कत जाइए, जो जम्बुक ग्रास है एक बूंद जल कारण है, एक पानी दी बूंद खातर चात्रिक दुख पावे, ते जे मर गया परत के दरिया पैदा करने सी दरियावां नू की करने, कह लगे चात्रिक दुख पावे एक बूंद का जल कारण चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले थुन काम न आवे, प्राण जो था के थिर नहीं कैसे ब्रमाऊ, डू बूढ़ मुवे नौका मिले कहो काहे चढ़ाऊ, ज्योंदे मेनू तिनका सहारा दे दे डुबना पिया, ते जिदन मर गया परत के बेड़ियां लिया मैं बेड़ी नू की करना। प्यारे अगला बचन जेड़ा कहा सी कहांगे भी हंकार दे बचन कहे, फिर रब नू चैलेंज किया, रब नू मुखातब करके कि उन्हू सामने रोस प्रगट किया, कहन लगे मैं नाही कछ हौ नहीं किछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा, मैं कुछ नहीं तू तो कृपा कर मेरे गरीब दी लज्जा रख ले। प्यारे जेड़े कर्म आपा करने ये भुगतने पैने ने, पर देखो सब तो वड्डा माड़ा कर्म पता है की है, गुरु जी ने अज कह कहन लगे कत्तक कर्म कमावने दोष ना काहू जोग, सब तो वड्डा माड़ा कर्मी परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। अगला बचन है वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, ते जे भुल गयो खिनमें कौड़े होए गए जितड़े माया भोग, जेड़े भोग भोगना पे ए कौड़े हो जाणगे, पर जे तू रब तो वेमुख ना होवे गुरु दे सन्मुख रहे तेरी झोली विच दात पेगी। गुरमुखो आओ देखो सत्कार योग भाई साहब होना ने तुसा एक उपराला कीता है बच्चियां नू गुरमत देन दा, बड़ी चंगी बात है। मैं आरंभ विच अर्ज कीती पनीरी खै जिस माली ने पनीरी सांभ ली बगीचे ओदी सुगंधी देणगे, रब मेहर करे। कबीर जी ने एक बहुत कमाल दा बचन किया, कदी मत समझिए कि बच्चे नू सिर्फ उम्र करके अंदर जेड़ा आत्मा है पता नहीं किन्ने कु दिनां दा सफर करदा पिया है, साडे सामने उम्र ओदी 7 साल 8 साल 10 साल है पर अंदर वाला आत्मा तां कई जन्मां दा चलिया है। बच्चा जे किते मां बाप आप किसे संचे विच ढले होण ते बच्चा जरूर ढलेगा। मैं सिर्फ दो तीन उदाहरणां देणियां चाहना। कबीर जी ने एक बचन कहा है कि जिस तरह बच्चा निर्मलताई बचपन विच लैके तुरदा है, रब मेहर करे बच्चा एक उस रुख की तरह है जिहड़ा धरती विचों निकलदा है, इन्ना कोमल ते लचकीला है जिधर ओनू करांगे आपां रुख ने उसे पासे ढल जाना है झुक जाना है, जिधर बच्चे नू तोरोगे उन्हें उसे पासे तुर पैना है। कबीर जी ने एक बचन कहा कबीर जैसी उपजी पेड़ ते, वैसे दे भाव अर्थ कुछ होर ने, पेड़ ते दा अर्थ टीकाकारा ने यही किते ने कि जिवें मानो के रुख कोमल है धरती चो निकलदा जे अखीरले समय तक कोमल रहे ते एदे वर्गा कोई नहीं, पर पेड़ ते दा अखरी अर्थ करांगे मूल के जदों माता दे उदर विच बच्चे दा जे जन्म नहीं होया जेड़ी लिव उथे लगी सी, जे किते ए लिव जन्म तो लैके मौत तक लगी रहे बंदे दी कीमत करोड़ा रतना नाल भी नहीं पाई जा सकती। जैसी उपजी पेड़ ते जिस तरह तू पैदा होए जो तैसी निभ है औड़, हीरा किसका बापड़ा पुजे ना रतन करोड़। पर देखो बच्चे अंदर एक दृढ़ता है, तीन चार उदाहरण ने सिर्फ। प्रहलाद एक बच्चा है, उस बच्चे दे अंदर रब ने मेहर की, कोई बाप दे सामने नहीं सी बोलदा पर प्रहलाद अपने बाप दे सामने खलो के बोलिया, उस बच्चे दी दृढ़ता कैसी सी, उसका अंदर किन्ना टिकिया सी, परमात्मा भी ओदे भोलेपन उते खुश हो गया, ओदे भरोसे ते मेहर की। ध्रुव की उम्र कितनी सी, ध्रुव बिल्कुल रब लई नहीं तुरिया, जदों बच्चे गुरमत लई तुरदे ने देखो अज इनाम मिलेगा, इन्हां लई बड़ी वड्डी चीज है। ध्रुव जिद्दन तुरिया उन्हें यह नहीं सी पुछिया मां मैनू रब किवें मिलेगा कि

शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सुकहु तल गुर सेविए एहन सहज सुभाए

करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसारे खोवै गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सुकहु टल गुर सेवियै एहन ससहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, साहिब गुरु अमरदास जी महाराज कहने भगत का जोड़ा रस्ता है बिखरा है, भगतां की चाल निराली, चाल निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। और कोई इतना वड्डा त्याग करे तो इस रस्ते पे चले ओखे आइए, पर मैं अर्ज करा जो इस रस्ते पे चल रहा है बड़ी बुलंदियां ते पहुंच जाता है, और उसनों जिस पद की प्राप्ति होंगी है उन्होंने कहने परम पद। ऐ पद नहीं जिदा फिक्र बनया रहे अज कुर्सी ते बैठे कल कोई ला ना देवे, कल कोई जो है परे ना सुट देवे। वो पद जो परम पद कहते ने, सिंघासन जिन्हों राम का सिंघासन कहते ने, भगत कबीर कहते मैं उस सिंघासन ते जा बैठा, अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक वे है कोई न सके पछानी। ते मैं हुण थोड़ा जिहा इसका खुलासा करना है कि राम का जो सिंघासन है एदी राजनीति की है, ते जिहड़ा अपना सिंघासन है एदी राजनीति की, आखिर इन्हां दी राजनीति ते होनी चाहीदी, नीति तो बिना तो सिंघासन आउंदे ही नहीं, सिंघासन चलदे ही नहीं। और इसका लंबा चौड़ा खुलासा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च ते भाई गुरदास जी दीआं वारां दे च मौजूद है। राम दे सिंघासन की राजनीति की है, यह गल वखरी है कि सन 47 दे च मैं चारों पासे देश दे च आवाजा सुनिया कि असी इस देश दे च राम राज लियावांगे, राम राज। ते राम राज परिषद बकायदा एक सियासी पार्टी भी खड़ी हुई सी जिदे मुखी सन करपात्री जी, एक संत से एक धार्मिक बंदा से, उन्हें इस पार्टी नु जन्म दिता। राम राज्य परिषद असि इस देश दे च राम दा राज लियाना है, ते राम दा राज लियाण तो मुराद धर्म दा राज लियाना है, परमात्मा दा राज लियाना है, ईश्वरी राज लियाना है, सच दा राज लियाना है। गल तो इतनी सी, राम राज दे च की सी, एक निक्की जिहा घटना कह के मैं अगे वधां। राम ने बकायदा नियम बना रखे सन, प्रजा दे चों कोई कोई बंदा अगर ए दोष ए गलतियां करेगा उन्हों ए सजा दिती जाएगी, पर जे राजा भी करेगा ते राजे नूं ए सजा दिती जाएगी। उन्हें बकायदा एक मर्यादा बना दिती भई ए गलती ए भुल करे ते राजे नूं की सजा है ते प्रजा नूं की सजा है। ते गजब दी गल ए है, इस वास्ते देशवासियां दे मन दे च राम दा बहुता प्यार होया कि राम ने आम बंदियां दे कीतियां होईयां गलतियां दी जिहड़ी सजा नियुक्त कीती सी ना उही सजा राजे वास्ते, रंचक मात्र भी फर्क नहीं रखिया। भई एक भुल अगर एक प्रजा दे चों कोई करदा है ते जिहड़ी सजा उसनूं दित्ती जाएगी उही सजा उसनूं दित्ती जाएगी अगर राजा करे, अगर हुक्मरान करे, अगर सिंघासन ते बैठा होया करे। इस वास्ते राम राज परिषद, राम राज दी भावना साडे देश दे च उजागर होईयां ते कईयां दे मन दे तड़प पैदा होई वी किसे तरीके नाल राम दा राज होवे। तो घटना की है, राम ने एक मर्यादा बना दित्ती सी, कोई स्त्री लगातार 3 महीने घर तों बाहर रही है ते 3 महीनियां बाद अगर वह घर दे च आउंदी है ते पति की मर्जी है उसनों रखना है या नहीं रखना, पे उन्हें मर्यादा बनाई श्री राम ने। श्री राम ने यह मर्यादा भी बनाई कि राजे की आखी हुई गल अगर बहुपक्षी काबले कबूल ना हुई ते राजे की उस गल नूं रद्द किया जा सकता है, ते बहुगिणती दे च अगर प्रजा कोई गल आखे ते राजे नूं वह गल कबूल भी करनी पएगी, प्रवान भी करनी पएगी, मनना भी पएगा। ये उसने मर्यादा बना दी। सीता जब घर दे च आई, आप अयोध्या दे राजा बने, सिंघासन ते बैठे, ते प्रजा की बहुती आवाज यह उठ पई भी सीता राम दे इस महल दे च नहीं रहनी चाहिए, ते 3 महीने रावण कोल रही है, आवाज उठी और यह बहुपक्षी उठी, एक धोबी तो उठी, बहुपक्षी आवाज उठी ते राम ने आप जो है मर्यादा बनाई सी, बहुत सहमति दे अगर प्रजा कुछ आखेगी तो राजे नूं भी झुकना पएगा, गल मन ली, काबले कबूल कर ली, जे प्रजा इस ढंग नाल चाहती है

0: सुख चाहिए। किसी रोग देच बंदा तड़प रहा है, बेबल है, ते डॉक्टर नू कहिंदा जिन्ना धन तैनू चाहिए ले, मैनू उस रोग तो मुक्त कर, ऐ ले धन, मैं धन कुर्बान करदा, तू मैनू ठीक कर। किसी डाकू ने सीने ते आके पिस्टल रख दिता है, ते आखे जेब जितना धन है दे दे, कहिंदा ऐ ले तू मेरी जान छड्ड, ऐ ले। जिथे बंदे नू दिस पै कि हुण धन तो भी सुख नहीं मिलता, धन नू त्याग रहे हां, देर नहीं लगती। इस देश दे ते बड़े बड़े राजे महाराजिया ने धन नू ठोकर मार दिती, कह दिता बई इहदे च कोई लभे ही नहीं सानू, सुख ते मिले ही नहीं। और दो लफ्ज होर मैं कह दिया, बंदे नू इह तन भी नहीं चाहीदा, इह जिंदगी नहीं चाहीदी, सुख चाहीदा। अगर सुख नहीं मिलिया तो खुदकशी करदिया भी देर नहीं लगती, तन नू घात करदिया भी देर नहीं लगती। रोज तुसी अखबारां च पढ़ लो, फलाने ने खुदकशी कर ली, फलाने ने आत्मघात कर लिया। मैनू पुरानी गाथा याद आ गई अलीगढ़ दी, ज्ञानी अमर सिंह जी चाकर यूपी सिख मिशन दे उदों इंचार्ज सन, ते शामी आपां सैर करन नू जा रहे से, ते एक नौजवान सामने पिंड चो भजे होया आ रहा सी, ते सामने दो जो है लाइना सन रेल दियां आन जान दियां, ते फरखाबाद एक्सप्रेस आ रही सी, वह भजिया भजे आया ते लाइन दे कोल खड़ा हो गया, ते असी दूरों देख रहे सी, वो लोले आ रहे सी भी शायद सामने गड्डी आ रही है, इस वास्ते खड़ा हो गया, पर गड्डी अजे दूर सी। पर जैसे गड्डी बिल्कुल नेड़े आई ना, ते लाइन दे उते लेट गया। जितने कोई उद्दम करे उपराला करे उस तक पहुंचे, गड्डी ते लंघ गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। भजे हुए सी गए, अजे खून दे च गरमाई सी, भावे टुकड़े हो गए, तो मैं देखिया बोल रहा सी, ऐ तड़ कटिया जा रुक बोल रहा सी, गालां कढ रहा सी अपने भरा नूं, तो उस तो अंदाजा ला लिया भी घरों लड़के आ रहे, भरा नाल झगड़ा हो गया, भरजाई नाल झगड़ा हो गया, उहदे बोलां तो अंदाजा लाया, सहजे सहजे दम तोड़ गए। उत्थे मैं अंदाजा लाया कि बंदा जब सोचता है कि इस तन दे होंदिया मैनूं सुख नहीं मिले, इस तन नूं की करना है, एक पासे सुट, बंदे नूं सुख चाहिदा है। ते हुण मैं अर्ज करां, सुख ना इस तन तो मिलता है, ना धन तो मिलता है, ना पुत्रां तो मिलता है, ना मित्री मित्रां तो मिलता है, ना पति तो मिलता है, ना पत्नी तो मिलता है, ये सब साधन ने, लक्ष्य नहीं है, मंजिले मकसूद नहीं। तो सुख किस तो मिलता है, मैं इंज कह दिया कि सुख किसे तो मिलता नहीं, चौंकना ना, सुख दा दूजा ना है परमात्मा। परमात्मा तो सुख नहीं मिलता, परमात्मा मिलता है तो सुख मिलता है, या इंज कह लो सुख मिलता है तो परमात्मा मिलता है, इंज कह लो, सुख दा ही नाम परमात्मा, और किसका नाम परमात्मा है, और किसनु परमात्मा कहोगे। रज के कोशिश कर लो, जगत तो सुख तो मिलता नहीं, धन इकट्ठा हो गया, संपदा इकट्ठी हो गई है, शान शौकत बन गई है, सता है, सुख तो मिलता नहीं, सुख का ही दूजा नाम परमात्मा, परमात्मा का ना ही सुख है। सूरज का मिलना ही रोशनी का मिलना है, सुख का मिलना ही परमात्मा का मिलना है, परमात्मा का मिलना ही सुख का मिलना है। तो हुण सुख किवें मिले, साहिब गुरु अमरदास जी महाराज जो है दसदे ने पावन पवित्र इस बाणी दे राही, आप सरवण करो कि किवें जो है सुख की प्राप्ति की जा सकती। हां जी,
1: गुर सेवा ते सुख पाईया, होरथा सुख ना पाल।
0: तू सुख की टोल किसे होर पासे ना कर, ए गल वखरी, मित्रां दी टोल जरूर कर, और धन संपदा की टोल जरूर कर, इस दे नाल ते बिना तेरी उपजीविका नहीं चलेगी, और सिलसिले जुटा, टोल कर। पर तू ये आखे कि हुण मित्रां चो मैनू सुख चाहिदा है, धन तो मैनू सुख चाहिदा है, पुत्रां तो मैनू सुख चाहिदा है, परिवार तो मैनू सुख चाहिदा है, साहिब कहिंदे होर ते सुख ना भाल, होर किसे पासे सुख लभण दी कोशिश कर ही ना, तू टोल कर ही ना। जे सुख लभणा है ते सुख लभेगा गुरु दी सेवा विचों, पर हुण

बैठे हैं, बस ये चल दिया फिर दिया लाशां, ये कबरां, ये शमशान घाट। महाराज इस तरह कहते ने, भावे कितना शिंगारे है, कितना साजो समान है, कितनी धन संपदा है, महाराज कहते ने ध्यान नाल इसनों विचारना है, मुर्दा शिंगारे है, मुर्दा शिंगारे है, जिंदा नहीं है। जिंदा ते तां हो सकदा से सो जीव्या जिस मन वसया सोए, नानक अवर ना जीवे कोई, नहीं जीवदा। बाकियों के मन ते मरे हुए ने, इस मरे हुए मन नो इस तरह लेना, क्योंकि तार्किक तर्क कर सकता है, तन दे तल ते जो मर गया है जिंदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलो मैं एक थानू घटना भी सुनावा। सिंगापुर दे च घटना घटी, एक चंगे धनाढ़ दा नौजवान लड़का चलाना कर गया सिंह। ये घटना बड़ी मशहूर, इथों ही अमृतसर दे निकटों संत गए हुए सन, अपने आप नूं संत कहिंदे सन, लोकी मनदे ने, इस तरह दे संतां नूं ही संत आखिया जांदा है, मनिया जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह दा बाणा ते उतार के उन्होंने बाणा अपना दिता होया। उन्होंने कहा इसनों घर दे च रखो, शीशे दे बक्से च, अगले साल मैं आवांगा इसनों जिंदा करांगा। मलेशिया सिंगापुर दे च ए घटना बड़ी मशहूर हुई, जिंदा करांगा। हुण बदकिस्मती समझ लो, मैं उन्हां दे नज किधरे उत्थे ही सी, उसे गुरुद्वारे कथा कर रहा सी जिथे वो आए। मैं कह बैठा, मैं कह साल बाद एदियां हड्डियां भी नहीं लगनियां, आखदा पिया संत आखे पिया। तो तनाव खड़ा हो गया, मेरे नाल झगड़ा शुरू हो गया। कहन लगे साल उड़ीके बिना तुसी किस तरह कह सकते हो? मैं कह सकता रब्बी नहीं है, ईश्वरी नहीं है, प्राण निकल चुके ने, डॉक्टरों ने कह देता है मुर्दा है, नहीं जिंदा होएगा, नहीं होएगा। साल बाद वो कहने जिंदा करांगा, मैं साल बाद शायद इसका मांस भी ना लवे, हड्डियां भी ना लवे। ये तनाव काफी वधिया, मैनू बड़ा बुरा वाला आख्या। जिन्हों का लड़का गुजरिया सानू पता नहीं है, संत सराप दे देंगे, तो मैं फिर समझ लेना, मैनू सराप लग जाए तो फिर सच समझ लेना, तो जे ना लगे तो फिर मेरी गल नू सच समझना। उन्होंने शीशे दे बक्से दे जद घर दे च रखण दा यतन किया, तो पुलिस घर पहुंच गई, मुर्दा घर दे च नहीं रख सकते, सिंगापुर के कानून के मुताबिक कब्रिस्तान दे दफन करना पे। तो हुण मुसलमानों का कब्रिस्तान उन्होंने इनकार कर दिता है, सिख ऐसे नहीं दफनाउण देना। ईसाइयों का कब्रिस्तान उन्होंने भी इनकार कर दिता, इत्थे सिर्फ ईसाई दफन हो सकते हैं, बोधियों के कब्रिस्तान विच दफन किया। तो संतां ने कहा साल बाद जिंदा करांगे, साल तो पहले पहले संत आप चलाना कर गए। उन्होंने भी शीशे के बक्से च रख के सवार के रखना पाया, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह की वसीयत की हुई सी, शायद सोचते हो गए दो चार साल बाद मैं जिंदा हो जावगा, बक्से च ही रखना मैं। पर चूंकि वो बहुतिया अपना चेला बना रहे, चेला बना चुके सन, तो चेले साढ़े धनवान सन, ते धनवान कोई सौ दे च एक अद कोल अकल आउंदी है, बाकी ते अकल नूं ताले ला के ही रखदे, बाकियां दी अकल ते बस धाने ही आउंदी और कुछ नहीं, इस तों इलावा उन्हां दी अकल नहीं आउंदी। माया आधारी अत अन्ना बोला, इते अंधे आउंदे ने, ना सच वेख सकदे ने, ना सच सुन सकदे ने। मैं ये लफ्ज भी कहे, मैं कहा तुहानूं गुरबाणी दी सच्चाई ना सुनाई दे रही है ना दिखाई दे रही।
तो मैं क्या गुरबाणी की रोशनी कहा जा सकता है अंधिया। अज इस घटना अंदाजन 25-26 साल हो गए शायद इस तो भी ज्यादा।

जगत का ज्ञान दिता जाता है और लिता जाता है। इस वास्ते गुरु बाबा ते दावे नाल कहिंदे ने अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अखरां दे च गीत होवे, अखरां दे च ज्ञान होवे ते अखरां दे बोध नाल परमात्मा दा बोध मिले, वह अखर बेमैनी नहीं हो सकते। एक एक अखर दे च कुछ मायना है, एक एक अखर किसी दिशा की प्रेरणा है और एक एक अखर दे विच अमृत रस भरिया होया है। अगर अखरां दा बोध होवे, उस तख्ती नूं पढ़ के, उस पट्टी नूं पढ़ के, गुरु नानक दी बांह पकड़ के पांदा पिता कल्याण दास जी पास आया और आखण लगा, पटवारी जी मेहता जी थोड़े इस बालक नूं मैं नहीं पढ़ा सकता। और हकीकत यह है, सच्चाई यह है, ये जगत विच पढ़न वास्ते नहीं आया, पढ़ाण वास्ते आया है। ये कुछ समझण लई नहीं आया, ये समझाण लई आया है। जन्मां जन्मांतरां दे बंद द्वार अज इसने मेरे खोल दिते ने, अज मेरे द्वार मेरे कपाट खुल गए ने, अज मैनू हकीकत दा बोध होया। मैं बहुत कुछ पढ़ाया है, बहुत कुछ पढ़ाया है, पर अफसोस मैं ते एक अखर भी नहीं पढ़िया। पर अज ये जो मेरे कोल बालक पढ़न आया है, इन्हें मैनू बहुत कुछ पढ़ा दिता, एक अखर विच बहुत कुछ पढ़ा दिता, बहुत सारा बोध करा दिता, बहुत सारा ज्ञान करा दिता। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं जद इस ढंग नाल पांदा नहीं पढ़ा सकिया तो मजबूर होके पिता कल्याण दास जी ने मौलवी पास बिठाया और आख्या, मौलवी साहब तुसीं परशियन पढ़ाओ, इन्हां नूं फारसी पढ़ाओ। तां गुरु नानक दा उत्थे भी यही प्रश्न सी, मौलवी साहब अलफ दे मायने दसो, अलफ दे अर्थ दसो। ते मौलवी ने सिर ठोक के कह दिता, अलफ इहदे कोई मायने नहीं। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहण लगे, अलफ ते अपने विच अल्लाह नूं छुपाई बैठे, जो अलफ दा उचारण नहीं कर सकदा वह अल्लाह दा उचारण किस तरह करेगा, ते जो अल्लाह दा उचारण नहीं कर सकदा वह अल्लाह नाल जुड़ेगा किस तरह, अल्लाह नूं समझेगा किस तरह। तो अलफ ते किसे मार्ग दी प्रेरणा है, अलफ ते किसे नाल जुड़न दा बहाना है, अलफ ते किसे मंजिले मकसूद तक पहुंचण दा एक सहारा है। गुरु नानक ने यह बचन इतने बिस्मादी रंग च कहे, इतनी एकाग्रता च कहे, इतनी मस्ती च कहे कि हंकारी मौलवी दा मस्तक झुक गया और आपने गुरु नानक दी कदम बोसी की थी। आख्या, हां ए अलफ ते अल्लाह दा ही सूचक है, ए अल्लाह ही अलफ दे समाया होया ते ए अलफ ही अल्लाह नूं प्रगट करदा। जद पिता कालू मायूस होए इस गल तो कि मौलवी ने और पांधे ने भी गुरु नानक नूं पढ़ाया नहीं, ता आपने स्वयं कोशिश की थी कि असी गुरु नानक देव जी महाराज नूं कुछ दसीए। पर जितना पिता कालू जी जगत बारे दसदे ने, उतना गुरु नानक देव जी जगत दे करते बारे गल करदे ने। जितना पिता कालू संसार दी गल करदा है, उस तों वध कई गुणा गुरु नानक देव जी महाराज निरंकार दी गल करन। जितनी गल पिता कालू व्यापार दी करे, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उतनी ही गल करतार दी करन। व्यापार ते करतार दा तालमेल ना बैठे, संसार ते निरंकार दा तालमेल ना बैठे, और इस तालमेल ना बैठन करके पिता ते पुत्र दा भी तालमेल ना बैठे। और पिता औखा ही रहा, जैसे जगत दे रैबरी पुरुषां तो मां बाप औखे रहे ने, उंज भी सियाणे कहिंदे ने कि महापुरुषां तो गालबन तीन लोग फायदा नहीं उठा सकते, प्रथम मां बाप, दूसरे शरीक और तीसरे दुश्मन। ए महापुरुष नूं बहुत नेड़े नहीं वेख सकते और ना ही जो है समझ सकते ने, इस वास्ते ओ उपरों उपरों वेखदे ने ते दूरी बनी रहिंदी है, संबंध नहीं जुड़दा। तो पिता कालू नूं इस गल दी चिंता होई कि मेरे घर दे ते ओ पुत्तर आ गया है जो सुदाई है, पर कौन पिता कल्याण दास नूं समझे और दसावे कि कल्याण दास जी, पिता कालू जी, ये सुदाई नहीं, इस सारे जगत

लंगत दौलत वंडिये रस अमृत खीर घयाली। घ्यो दे नाल ओत परोत खीर दिन रात लंगर दे चल दिए। पकवान सुंदर बनदे ने, आए हुए यात्रुओं नु छकाए जांदे ने। पहले भोजन नाल उन्हां नु तृप्त कीता जांदा है, ते जद उन्हां दा तन तृप्त हो जांदा है तो उन्हां दी मन दी तृप्ति लई फिर भजन दा इंतजाम, फिर नाम बाणी दा अभ्यास साहिब ए करवांदे सन, ताकि तन दी तृप्ति तो बाद इन्हां नु मन दा सुकून भी मिले, मन दी शांति भी मिले। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी चलाई हुई परंपरा लंगर दी उस नु आपने विस्तृत कीता, विस्तार सहित फैलाया जगाया। फिर इसे तरीके दे नाल परोपकार करदे हुए गुरबाणी दा उपदेश देंदे हुए सन 1606 बिक्रमी च खंडूर साहब विच आप ज्योति जोत समा गए और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा परम रूप स्थापन कर गए धन गुरु अमरदास जी महाराज नु, जो आप दे रिश्ते विच बकायदा कुड़म सन। गुरु अंगद देव जी महाराज दे बेशतर सलोक ने, बहुत सारे शब्द ने जो बकायदा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे जो है दर्ज ने, लेकिन सारे शब्दां विच सारे सलोकां विच हुक्म मनन दी ताकीद है, हुक्म मनन दा उपदेश है, हुक्म दे मार्ग ते चलन दा ही संदेश है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो जो शिक्षा दीक्षा धन भाई लैणे ने लई अपने तौर ते पूरी शक्ति दे नाल वंडदे रहे। यादगारी अस्थान आप जी दा खंडूर साहिब विच मौजूद है, जिथे आपने जगत नू पढ़ाना शुरू कीता ओ अस्थान भी आप जी दा पावन रूप दे जो है मौजूद है। भट्ट आप दी उपमा इस तरीके नाल करदे ने, दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप प्रनासन, शबद सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन, लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रित पालन, आत्म रत संग्रहण कहण अमृत कल ढालन, सतगुरु कल सतगुरु तिलत सत लागे सो पै तरे, गुर जगत फिरण सी अंगरो राज जोग लैणा करे। भट्ट कहिंदे ने इह लैणा जी इह गुरु अंगद देव जी इत्थे राज योग दी परंपरा चला रहे ने, इह अंदरों ब्रह्म नाल जुड़े होए ने, बाहरों जगत नाल जुड़े होए ने। मूल आप दा संदेश उपदेश परमात्मा दी खातर पदार्थ तो नहीं टुटना और पदार्थां दी खातर परमात्मा तो नहीं टुटना, संसार दी खातर निरंकार तो नहीं टुटना और निरंकार दी खातर संसार तो नहीं टुटना, क्योंकि संसार भी उसे दा रूप है, संसार प्रभु दा तन है और खुद आप स्वभाविक रूप विच इक जोत है। इसे तरीके नाल उसने साडी बणतर बनाई है, सानू तन दिता है, सानू मन दिता है। मन दे जद प्रभु दा नाम वस जाए तो मन जोगी बन जांदा है और तन नू पदार्थ मिल जान तो तन राजा बन जांदा है। इंज धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने जगत नू जो संदेश ते उपदेश दिता ओ राज योग दा दिता। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज ने इसे परंपरा नू अगे तोरन लई फिर तीसरी जोत धन गुरु अमरदास जी महाराज दी परिक्रमा करके और उसे परंपरा दे मुताबिक अपना मस्तक बिरद बाबा गुरु अमरदास जी महाराज दे कदमा ते रखे, हथ जोड़ के मथा टेकया, आप तन दे करके धरती विच समा गए, जोत करके गुरु अमरदास जी महाराज दे अंदर विराजमान होए। घन हर बूंद बसोरु मावल कुसम बसंत गलंत नयावे, राव सस किरण उदर सागर को